सिमरत नस्सी जां कै संग सदा प्रभ बसै प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम होत तन शार प्रभ चित आई पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै घर सदा आनंद राग बला।

गए पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी चूके जम की काणी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार। बलावल महला पंजवा बिखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकती ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

बहु तपत व्यापिया शीतल पये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपुताना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साक्त नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमल सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सत गुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। हाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तेण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव, साध संग भजिए गोपाल। गुण गावत टूटे जम जाल, आपे सतगुरे आपे प्रतपाल।
ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾ ਦਰਵਾਲ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਹਰ ਚਰਨੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਨੀਂਦ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਰਾਜ ਰਾਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੀ ਧਿਆਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰ।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर देहो मुगद उधारे। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझे। बाद साद अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर विरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रिपवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल। मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है सियानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोडो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यो मुख जोरे है अद विचों टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उतै छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेट हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलोह मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मै ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोरलिय खे रहाउ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने
दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवां। एक टेक गोविंद की त्यागी अनयास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे,

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमा।

ना जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख परवेस मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ। सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव। निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु न विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपता सिया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन्न नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाव। संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई। कथा प्रातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ। आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक परिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तो छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत कन।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

योग जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

रह राखिया अपनी करमया रहाउ बाह पकड़ प्रभ का दिया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला।

समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ, आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ। रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न भए बांचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास। रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा, सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है, साध साध मुखते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल भए हर हर नाम चीन। रहाओ पूर रहे ओ सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा, अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ। रहाओ जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा, मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा, गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल भए राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बलावल महला पंजवा, तरत सुहावी सफल थान पूर्ण भए काम, पौ नाठा प्रम मिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाव प्रगट भए संसार मह फिरते पहनाम, नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई। रहाओ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास,

पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया, अन दिन रंग राता, शांत सहज आनंद घना, पूर्ण भई आस, सुख पाया हर साध संग, सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन, तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे, नानक के स्वामी। बलावल महला पंजवा, ताती वाओ ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ पये सहाई। बलावल महला पंजवा, अपने बाल के आप रखियन, पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद पय, पूर्ण पई सेव रहाव। भगत जना की बेनती सुनी प्रभे आप, रोग मटाए जिवालियन, जा का वड प्रताप, दुख हमारे बख्शियन, अपनी कल तारी, मन बाचत फल दितियन, नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवा, चौपदे दो पदे कर शिवा,

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाई सबहू तले तले सब ऊपर ए

नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती।

घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहां संग माते पोत पोत लपटाई आल जाल नहीं कशु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा।

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूच।

गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोई रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुरह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई।

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिया किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहया समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरै मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौं क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता रहाओ। अन बोले को तुही पछान है, जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कह, जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद, आन ना बियो करता। कहो नानक गुरु।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि

नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची दर

या सगल जहान मिलावन महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत परपकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाउ कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पाव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही बिलावल महला।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आज्ञा सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरल सम्राट अकाथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बलावल महला पंजवा सुलही के नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुलही हुए मुआ ना पाक रहाउ काड कुठार कसम सिर काटिया इनमें हुए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया परपूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिस मह प्राणी गलत पया सरन परे

राखी पै भंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान मलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारी सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

अपार ब्रह्म परमेश्वर ता का हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया इहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान।

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन

आकौ धराऊ काश्यो बलवंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवा। तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन। बलावल महला पंजवा। ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मेरे ही अरे बासे हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मान पावन दुबदा दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो। बलावल महला पंजवा। ऐसी दीखिया जन स्यों मंगा तुमरो

जन चर रज मुख माथे लागी हासा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो हो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन भीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निधान नानक हर सेवा अवर से

पतच पावन प्रभ बिरद तुम्हारु हमरे दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हम मैं पटल कृपा कर जारु जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारु जन नानक प्यास

फुसल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए।

हावै हार कजर बस्त्र आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाउ सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मलावहु कब करया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहौ सगरो अंग मटावहु तव कर ही लालन पावहु कब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे। उलझियो आलम करांद कमल जियो अन रस नहीं चाहे। एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है। मन हर रस कूटी है

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रु बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उचरे माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप ना बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर कर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभमानै गुरमुख नाम सदा सदा बखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई दुख काटै हिरदै नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करनी सार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हों मेटै अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह ना सको बिन नावै गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरहो दस द्वार है जाकी अहनस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावह मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहुमानक भरिया जागे ज्ञान तत लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहिता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जगाती नेड़ ना आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत ना लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्तै श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जानै नदरी आवै सब ब्रह्म पसरिया राम नाम है ज्योत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया नानक दीन दयाल भए हैं भगत पाए हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावहु हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरल परे से ही जन उबरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ पार अठारह मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभमान बिछड़ दूर गईया हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खलैया गुर चरणी एक शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परे परैया शास्त्र वेद पुराण पकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाव भार बढ़ैया नाम जपहो नामे गत पावहो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हम मैं जाए ता निर्मल होवै गुरमुख परचै परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा
जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरा प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जान की टेक हर नाम टिकैया।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूत हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है काम बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाउ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा, तृतीया ब्रह्म

कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मूक शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

एकादशी एक हृदय वसावे, हिंसा ममता मोह चुकावे, फल पावे व्रत आत्म चीने, पखंड राच तत नहीं बीने, निर्मल निराहार ने केवल

पत खोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त नवास सच मन भाणे चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द बीचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: बार बार
1: दिन सनहण तिमें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए पर पंच चूकै सच समाए जाकै

कह कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका हो।

वह मुग्ध ग्वार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक।

तिसह भावै सो थीऐ। किरपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जीऐ। मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे। पेख पवनी हठ ना जाना, नानका सच गह रहे। पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम। नवहान नव धन शब्द जागी, अपने पिर पाणिया। तज कूड़ कपत सुभाउ दूजा, चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे, साच शब्द निशानिया। कर जोड़ नानक साच मांगै, नदर कर तुद पाणिया। जाग सलो नड़िए बोलै गुरबाणी राम, जिन सुन मन्याड़ी अकथ कहानी राम। अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख बूजे। ओह शब्द समाए आप गवाए, रे पवन सोजी सूजे। रह अतीत परंपर राता, साच मन गुण सारिया। ओह पूर रहिया सर्ब ठाई, नानका उर तारिया। महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम। मन मार रीजै शब्द सीजै, त्रै लोक नाथ पछाणे। मन दीक डोल।

उठे हर प्रभ पाया, रंग रलिया माना राम, वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर

सफल जन्म हर पाया, नानक प्रभ कीना राम। बलावल महला चौथा सलोक, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो। मन वसै वड भाग, गुर पूरै वेख लिया नान।

कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुरत हर।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागै वड्डै भागै कब मिलिया पूर्ण पति सहजे समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते दिन रैन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहंग मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सुलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद आंदिन बजह वाजे दिन सरैण अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे पंडहारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागीय गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागीय भगत ठगौरी पाए मोह अनत कतहु ना तावह बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

वास आओ सखी असि तिरका मंगल गावह तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

चित्तर चंचल अनक पाव दिखावे होए तीत मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीर बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु।

मुख हो नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावै तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जी यो संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरणी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी।

नानक प्रव सरनागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाहां पकड़ तम ते काढ़िया

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इश पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ देखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

हरि उत्तम हर प्रभु गावेया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुरमस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद अपाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेतलाय, नानक जिन को नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हमै रोग कमावना, हत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी, सब वडियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाई है, गुरपुरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाई है, जिस पूर्व हो है लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरा प्रभ मेल मलाई, सतगुर का दर्शन सफल है, जेहा को इच्छे तेहा फल पाई। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाई, हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आई, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाई, सचो दह दिस पसरिया, गुर कै सहज सुभाई, नानक जिने अंदर सच है, से जन छपहना किसे देश पाई। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जा कहो नजर करे, मानस ते देवते भए, सच्ची भगत जिस दे, हौं मैं मार मलायन, गुर कै शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई, हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, उन्ना अंदर हिरदै पाई, निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन, उन्ना पराया भला ना सुखाई, क्या हुआ किसे ही की झख मारी, जा सच्चे स्यों बन आई, जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई, सब झख झख।

निदान सुख दाता तेरे मन वसै हम मैं जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओह कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगे, करमी सत गुर भेटी है ता सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भौ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भनत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजे पाए सूते कबहु ना जाग है, माया मोह प्यार। नाम ना चेत है शब्द ना विचार है, इह मनमुख का विचार, हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए वे।

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरी धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हम मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मन है समाणी अंतर निर्मल नाउ। अन दिन जागे कदे ना सोए सहजे अमृत पियाउ। मीठा बोले अमृत बाणी अन दिन हर गुण गाउ। निज कर वासा सदा सुंदे नानक तिन मिलिया सुख पाऊ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जे किसै किहो दिस आवे ता कोई किहो मंग ले अकै कोई किहो देवाए। इहो हर तन जोर कीता किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे तिसका मुंह।

दूर मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच कूर नानक बख्श मलायन सच्चै शब्द हदूर महला तीजा।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ नाम मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर राम रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, भवजन निध भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया, किस किया ना।

दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

भेख तारी आसन पवन दूर कर बबरे छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाओ जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते।

सरोवर पीतरे आछय कमल अनूप परम ज्योत पुरखोत्म जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो।

तही जैसी पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहु मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बलावल चरण कमल जा कहर दे बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब एह मत जो सब मह पेखे कुटिल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके लै नरजा मन तोले देव जह ओह जाए तही।

लावल बाणी रविदास भगत के एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी।

बर्न अबर्न रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह जल समीप पानरव

के कारण एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

पहला जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई रहाऊ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरै कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हरि ऊपर की जय।

अपनी बिरथा बहु बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दिसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सुहाओ होए न आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा, गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाउ जा मह सब निदान, सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बसह हृदय हरी मोहे चरना, गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करइए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइए मेरे मन हर जप हर नित पड़इए हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़इए रहाउ हर परपंच किया सब करतै विच आपे अपनी जोत तरइए हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा ध्याए तू तुद ले छड़इए गोंड महला चौथा।

मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजाव हो हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाऊ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहे संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रह

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जाको है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां।

गुर के सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नारायण साध संग नारायण बारं बार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवां जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जप

पाई, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां, अचर्य कथा महा अनूप, परात्मा पार ब्रह्म का रूप, रहाउ ना एह बूढ़ा ना एह बाला, ना इस दूख नहीं जम जाला, ना एह बिनसै ना एह जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु ना पाई, नानक ता कै बल बल जाई, गोंड महला पंजवा, संतन कै बलिहार जाऊ, संतन कै संग राम गुण गाऊ, संत प्रसाद किलविख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघन व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै, रहाउ पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

अमराव पतियाय दुष्ट अहंकारी मार पचाय निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाही सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिया कहिया। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिया। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबहू ना डोले। गोंड नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पांच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरै तरै ध्यान वाके हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहो मानस ना एहो देव ना एहो जति कहा वैसे ओ। ना एहो जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहो गिरही ना ओदासी ना एहो राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहो ब्राह्मण ना एहो खाती। ना एहो तपा कहावै सेख ना एहो जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाही, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहा भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसे संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तऊ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपरेत होई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग नीका वन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
ਧਨ ਅਨਾਦ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਮੇਦ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ਪਰਾਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਤਉ ਨਾ ਪੁੱਜਹਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਰਾਮਹਿ ਭਾਜਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਰਹਾਉ ਗਯਾ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਬਸਤਾ ਮੁਖ ਬੇਦ ਚਤਰ ਪੜਤਾ ਸਗਲ ਕਰਮ ਅਸ਼ਤਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਖੱਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾ ਸੇਵਾ ਸਖਤ ਸੰਵਾਦੰ ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਾਵ ਸਿੰਦੰ ਗੋਂਡ ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਵਾਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅਨਤ ਨਾ ਫੇਰੋ ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੀਰੈ ਪਸੁਆਰਾ ਸੋਨਾ ਗੜਤੇ ਹੀਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੀਰੈ ਪਰਨਾਰੀ ਕੌਡਾ ਡਾਰਤ ਹੀਰੈ ਜੁਆਰੀ

गुरप्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना, कब ही किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गति, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाउ, कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जियड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरन लखाए मंडल मह आए, जीवन साजह माई, एक चले हम देख है स्वामी, पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत, ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जेतू देव है, अंते हुए सखाई, राम कली महला पहला, सर्ब ज्योत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ, जह पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही, आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहया भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तह रहया समाई, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लाग सबाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेहगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वसह कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिय, जीवत्या नह मरिय रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला, आस अंदेसा दोए पट जड़ी, माया जल खाई पानी कर बांधिया, सत कै आसन पुरख रह, किंते नामा अंत ना जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा भीतर रह निरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिय, जीवत्या इयों मरिय, रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगण कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाध समावे रहाउ, भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप हुए आसन पावे।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए। राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय। हर के लोग राम जन नीके, पागहीन ना सुखाए। ज्यो ज्यो राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर रख हो हर जियो। हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम। मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है, सेवड भागी हृदय।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु ऐसी सेव कमावहु आपस ते ऊपर सब जानहु तौ दरगाह सुख पावहु संत हो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलो नवे निध पावहो इन बिद तत बिलोई परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो आत्म चीनो पाई निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर।

बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचर्ज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सूझी नाही जो पेख है किस बण आवे।

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाऊ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

वा तुने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक लचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नरहर जान हदूरे पूंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सधाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

रहाउ रथ में वसिया सत का खेड़ा तृतीय मह किस भया दुतेड़ा द्वितीया अर्दो अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक सूत परोए मणिए गांठी भिन भिन भिन भिन तनिए फिरती माला बहु विद पाए खिंचया सूत ता आई थाए चहो मह एक मत है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इउं किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाउ दूजा राम।

को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ। महिमा जा की गहर गंभीर,

अंतर प्रगटे हो आप, ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पालै परिया, सगल कटाम ओ जान लै तरिया। ना किस भरम

पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

तार जिसा सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बे अंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

था, घट घट रमैया तिन्ही दीठा, राम कली महला पंजवा, पंच शब्द तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद, केल करह संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग, सुख सहज आनंद भवन, साध संग बैस

परगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संतह देख निहाल राम कली महला पंजवा तेरे काज ना ग्रह राजमाल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासते, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापे हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावे जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संत

जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कशु न लह। इस त्याग सतसंगत करै, वड भागी नानक ओ तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाउ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

सगल अपावना चालह संग भवजल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतरै मैल हों मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए तां का रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कभो न बिसर गोपाल तेरे दास की होवा तूर नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली महला पंजवां तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मनते जाए, दुर्मत बिन सहराचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पवो भागा निरपो मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को पंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाउ कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संत।

ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास, राम कली महला पंजवां, मेहमाना जानह बेद, ब्रह्मे नहीं जानह भेद, अवतार ना जानह अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जानह, सुन सुन अवर बखाने रहाउ, संकरा नहीं जानह भेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकी गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेत आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किस कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, इस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अरादू।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

बंसुरी सत पाई, करनहार प्रभ हृदय बूठा, हाथी मछली का जाला टूटा, सूके काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सत गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप।

साध संग दुख जाए रहाओ। जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास अंधे

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरहु पार। राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ह नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बनासी महा खया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाव, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी धूर काटे जम जाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण

अभमान एक त्याई साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास काट काट रव रहे।

जय जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजे रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जा कह सिमरै पावे पद निर्वाणा। भई दयाल कृपाल संत जन।

सुबा सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिट नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घट निसबासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोतै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

मूर्ख कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई। राम कली मोहल्ला पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चांद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै, सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे, जीवन तलब निवार। हुए परवाना करे तिंगाना, कल लखन विचार रहाओ। कितै देश ना आया सुनिए, तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही, महल उस

दंड माया मोहे सह जम दंड फूटे खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाई बिंद न रख है जति कहावे है माई मांगत त्रै लभावे है निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना। त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा। उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग। जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत। राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी। सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना। गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ। गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए। नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा। हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै। जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई। अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी। पार कर जाए न

तत् परोता जग सूता मारे आवै जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजै दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जाए, चार सपवन संघासन पी जाए, न्योली कर्म खट कर्म करी जाए, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

ही दुख दीजै, बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं कीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उतपुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरण लागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत बीचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावह बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वधाई है, की नाम वसार है परम गया रहाऊ, जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया, पुन दान इशनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया, लालच लागे नाम बसारे ओ, आवत जावत जन्म गया, जां जम ताए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया, हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

योग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

आई तै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम बड़े आई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा धारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावां शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो।

विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखोट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बिचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पव जल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिच्चर्यंतर सास तिच्चर सेवा कीचै जाए मिलिया राम रारी। आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटोह बलिहारी। माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी। आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी। नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा।

शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्ब थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

वन खंड पाया इन्हीं मोन अवतूत सदाया कोई कहतो अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लेती किन्हीं कहया हऊ तीर्थवासी कोई अन तज भया उदासी किन्हीं भवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया।

हर हर आधारा किन्हीं कुंगर निरत कराई किन्हू वर्तने माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नाम इह माना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूजी तृष्णा महासीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माती काले देहरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर

सिज पावै नहीं सीजै कार्ज सबरै मन प्रभति आइजै इहां उहां एकै ओही जत कत देखियै तत तत तोही तिस सेवत मन आलस करै जिस विसरै एक निमख ना सरै हम अपराधी निर्गुण यारे ना किस सेवा ना कर मारे गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवां काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वपारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाए संत बिहावै कीर्तन गाए काहू बिहावै दिन रैन चालत काहू बिहावै सो पिड़ मालत काहू बिहावै बाल पढ़ावत संत बिहावै हर जस गावत काहू बिहावै नट नाटक निरते काहू बिहावै जिया एह हिरते काहू बिहावै राज मह डरते संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

हर सिमरत तृप्त अगाई संतो हो। आत्म राम रविया सभ अंतर कत आवे कत जाई संतो हो। आद जुगादि है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो हो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो हो। मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो हो। राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ। अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी। तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी। राम कली महला।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया।

भगत हां तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो हो तिक्खी वालो हो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिशना वड्डा रोग लगा।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

करहे रसना कहया कछु ना जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसै बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप भी।

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावी अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर तेरास जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत कित, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी।

बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रस ना रस समाणी, सच अलख वडाणी, तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया, इहो साचा सोहिला, साचे कर गावहु, गावो ता सोहिला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बजावे, इहो सच सबना का खसम है।

सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे, पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित्र, सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जगदाता सोए, भगत वसल तिहो लोए जियो, गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो, अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया, हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो, सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो, मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो, हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे, आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे, तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो, तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो, सतगुर पाणै अपनै बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया, मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे, सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया, सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया, अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया, हर गुरह पाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा,
माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुर बिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा।

अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच भाखै गुर का शब्द बीचारा कहो नानक जो

सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगाणी सारंग पाणे जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिनह त्याया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणिए कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्याव है पुरख पत परमेश्वरा सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइए संतन कै किल वेख सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजे अम्यो पीजे रैन दिनस अराधिए जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है साधी है भाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंद मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरण दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसर। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसर। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे नारायण, दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वड भागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकी उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी। मन चिंदियाड़ा फल पाव हो, राम कली महला पंजवा। रुति सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर। आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन भय हरन, सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महामूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन तेजन, जिन्नी एक मन त्याया।
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो, सलोक उद्यम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहु, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक शरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो, सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जा का वड प्रताप, शंत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया, कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानक ओट तेरी, राख पूर्ण काम जियो, सलोक शरदा लागी संग प्रीत में, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए, कर गहलीनी साजन है, जन्म जन्म के मीत, चरणहा दासी कर लई, नानक प्रभ हित चीत, शंत रुत बरस सुहेलिया, सावन पादवे आनंद जियो, धान उन्नम बुठे, जल तल पूरिया मकरंद जियो, प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई, हर नाम नवनिध ग्रह भरी, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिय नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते टिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते।

हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण है यों कर महल संजापै प्रभ नेड़ हर दूर ना जानू एको सृष्ट सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गह राखो अफर्यो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विभूते इब तब फिर पछ

लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा।

प्राप्त हुए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगमय अगोचर कीमत नहीं पाए ता मिली है जान ले मलाए गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया नीत काम क्रोध काया कौ गल ज्यों कंचन सुहागा ढाले कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई और क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आख सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थर चीत समाध सुगोनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर

तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाई चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चित है एक तही सुख होय चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत सिउ घर जाय सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलह ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देख परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस नरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची खोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, डाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपण, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपण, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोए, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिले, तिनकै हौ बल जाओ, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाओ, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाओ, जो असारे सोता हसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस संभला।

कंध ग्रंत विण नावै क्यों छूटिए जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

हार मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

को अपना तन मन आगे देऊ। अस्त्र करता तू तनी तिस ही की मैं ओट, गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती मन।

साचो ठाकुर मन वसे हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवे क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुट्टै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सुधै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारू, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम आधारू आपी मेल मलाई करता लागे साच प्यारू। हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उदयानी, कंद मूल आहारू खाइए औदू बोले ज्ञानी। तीरथ नाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई, गोरख भूत लहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई। हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चेतना डुलाई, बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई। हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू। दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेव हो खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोले गुरमुख बूजे जोग जुगत इव पाइए। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी। हिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी, साचा साहिब साची नाई परख गुर की बात खरी। ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल। कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई। कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई। नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा। एहो तत् बिचारे सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई। नानक हौं मैं मेट समाई, सुन निरंतर दीजे बंद, उड्डे ना हंसा पड़े ना कंध, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे भावे साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो हो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी। नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार। नानक साचा करो बीचार, सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहद राते इहो मन लाया। मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रै गुण मेटे खाइए सार। नानक तारे तारन हार, आद को कवन बिचार कथियले, सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले। घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए। सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बैराइए। गुर कै शब्द हौमै बिख मारे ता निज कर होवै वासो, जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे। नानक ताका दासु कहां ते आवे कहां एहो जावे, कहां एहो रह समाई। एस शब्द को जो अर्थावे
तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्तै अवगतै पावे, गुरमुख लगै प्यारू, आपे सुरता।

गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबहै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमै जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाई साच रतो पत स्यों घर जाय साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर विद जानै गुरमुख परविरत नरविरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते होमै जाए नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावै मूख द्वार नाम रते त्रि भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावै बोलै सब वेकार नानक।

मह जोगी परमाए सन्यासी से चार गुर कै शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वडभागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख भौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

अपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने भेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज पाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बूझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुर्मत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वक्र धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिये भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नगरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख हो मैं विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाक है सच रपै रंग कबहू ना जावे जा एहो हिरदा दे ना होती तो मन कैठ रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जाग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हउमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हउमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हउमै मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई।

सहसा गया बलाय। ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक गुरु।

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा को नदर करी पौड़ी दूजा भाउ रचायो।

लोग रथ विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया।

इस्त्री पुरखै खटियै पाऊ, भावै आऊ भावै जाऊ, शास्त वेद न मानै कोई, आपो आपै पूजा होए, काजी होए कै बह न्याय, फेरे तस्बी करे खुदाई, बड्डी लै कै हक गवाए, जे को पुछै ता पढ़ सुनाई, तुर्क मंत्र कन हृदय समाए, लोक महावह चाड़ी खाए, चौका दे कै सुचा होए, ऐसा हिंदू वेखो कोए, जोगी गिरी जटा बेपूत, आगे पाछे रोवह पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर शाही पाई।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पर गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

संताप औ हट पट्टण मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख नारूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

पौड़ी हर मंदिर सोई आखी जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी कर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना जा।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे, ओस पिछे डुब दे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका, होड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापे। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया, अहंकार गुआपे।

काया हंस तुर मेल करता लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जान ते हो वरत जे सौ आख कोई। जिते सो वस्त ना जापई आपे वरतो जान, नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए। पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिएसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावण रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेख मंगिए औत जनींदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग। नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग, नानक नदनी कर्म होए जाव है सगल विजोग। पौड़ी मनमुख मोह गबार है दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है नित नीर बरोले। गुरमुख नाम त्याई है मत तत कडोले, अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले। आपे

मोहत किस हन्ने सच पराणा हुवै नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहिब सचो सच्चा टिचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुरु देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुरपूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौं बलिहारी तिन जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ
हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग महला पंजवां।

तिचर रखन गांड जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मन मुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई चिक्कड़ पत्थर बंद अंधे आप ना जाननी फक्कड़ पिटन तंद।

तो लाई तह लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सेती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया इन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवे मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगे दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवह चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवह चेत

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवां। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवां। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

जाहि भौजल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाहि जिनको लगी प्यास अमृत से खाहि कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहि सब सहलो कृपाल।

दूजा तिस न बुझायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरा

आय अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नहाइ ना तू आवह वस धरती ताइ ना तू आवह वस कितै सियाण पै ना तू आवह वस बहुता दान दे सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक।

अमृत रस खाएं, नानक जिस मन वसै जिसके सब दुख मटाएं। महला पंजवा, हुक्म उचलै हुक्मे रह, हुक्मे दुख सुख सम कर सह, हुक्मे नाम जपै दिन रात।

होगा हरक आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई कलाणे दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुहन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमती आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर टूट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरती है दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाइन सती है जिने आखी सोई करे

साली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुर आखे सच्चा करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करत बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मसकल हुए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जां काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरो गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत

दोष मन मह शब्द प्रमाण आवागौण निवारयू कर नगर निशान अवतरिया अवतार ले सो पुरख सो जान चखड़ वाओ ना डोले पर्वत मेरान जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान क्या सलाही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान दान जे सतगुरु भाव सी सो सत्ते दान नानक हमदा सत्र सिर।

कान में लो, गुर का शब्द गुड़ की नरी, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरी, कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे, एक बूंद भर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे, रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे, मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे, तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे, सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे, निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे, कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा, सुखमन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा, औदू मेरा मन मतवारा, उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया, त्रे भवन भया उजियारा रहाऊ, दोए पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता, छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता, उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो राधे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोलह पांडे दोजक पर है रहाव। आपने ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है। चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है। तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया। ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा। गुरमुख बिरले जानी रहाव पवर एक पोह परस बीदा। बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया। आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तीरिंदा पर अपवाद ना छूटै आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

बंधन पाया मुख तै गुरे अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पुंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मयासा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया सुनतै सुन मन बसाया।

गुड़ी आकाश मदे परमियले पंच जनास्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांदियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजे असमेद जग कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तऊ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित है लीजे रहाउ गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदार नाइये गोमती सहस गऊ दान कीजे कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

होए कैसे, जो पार सह ना परसे, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबह नानासी, कहो रविदास सबह नहीं समझस, भूल परे।

हारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कन गाजे।

जप एहन सुनाम हरे कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरे रहाउ हर हर नाम जप है अराध है सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाध नगर में है एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो नाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुर बचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखी गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाय गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बस के हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे।

बालक स्वामी हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरियो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हम बाल बाल बाल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया पास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंचह हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाऊ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान त्या

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावै संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावै कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दुपदे

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हम मैं पीर रहाउ, तप्त बजानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई बीर, खुले ब्रह्म पीत मेरे।

खोरी। जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी। पूर्ण पूर रहे कृपा निद आन पेखो होरी। नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी। नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण। कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन। रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन। पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन। जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन। दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन। नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो। सतगुर दीनो दान रहाओ सुख दाता दुख भंजन हारा। गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने। बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना। प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर। नानक सद कुर्बान नट महला।

नीता बिनसै दुख विपरीता सब अर्पौ मन तन चीत रहाउ कोई विरला आपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहि पनीत नानक दास बल बल कीत नाटष्टपदियां महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मन तन नाम आधारी खिन पल रह ना सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम संभारी रहाव हर हर हर हर हर मन त्यागहु मैं हर हर नाम प्यारी दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर गुर कै शब्द सुवारी मधुसूदन जग जीवन माधु मेरे ठाकुर अगम अपारी एक बिनो बेनती करो गुर आगे मैं साधु चरण पखारी सहस नेतर नेतर है प्रभ कौ

हर अमृत सर नावहारी सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको मिल कलमल पाप उतारी रहाऊ संगत का गुण बहुत अधिकाई पढ़ सुआगन के उधारी परसन परस भय कुबिजा को लै बैकुंठ सधारी अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बोलारी मेरे ठाकुर कै मन

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यों मथिया नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी। श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम नेक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे। हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे। रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे। पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावहो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे। मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कन हारे। साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारी। ज्यों ज्यों निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारी। संतन संत साध मिल रही है गुण बोल है पर उपकारी। संतै संत मिले मन बिगसै ज्यों जल मिल कमल सवारी। लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी। मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी। राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी। नानक मैं

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुरु दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जो दरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागू।

लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो ब्रह्म पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन भय शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मन मुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मह बिन सजाए परतापै दंड धर्म राय का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीत बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चार

आवे तिस मन देवो कत काट। हर साजन मेलियो गुर पूरै, गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अध काट। बिन हर नाम को मुक्त ना पावे, बहु कंचन दीजै कट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा, लज भानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक।

जास नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गुआई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आईए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुह लेख पई ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

निर्मल मुजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाउ बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरणी।

होकर पत तपनीत असंख हो हर चरणी मन लाग अठ सठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन ना होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए मार

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

सच सोहे एक भगती सार ना जाननी मनमुख भरम भुलाए ओना विच आप वरतदा करना किशु ना जाए जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख।

आनंदिनते आए हर नाओ। सतगुर कै बचन अराध तू, अन दिन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

पियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

वाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाऊ सुर नारे गण गंदर बेजपियो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लए छाए जिथे अवकट गलियां पीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंद पो

सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए। जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए। ओए जम दर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की सरनाई। हर जियो आप दयाल हुए जनना।

सुगड़ सुजानी जन नानक सरनागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

हर का मन मानिया सो सेवक चौह जुग चौह कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेखै अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छडाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया। छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक। हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो। जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरियो बदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो।

नानक ओट हर की लीजे पुजा पसारी मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति।

तटकावसरी जिसका जास सुनत भव तरी त्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर।

गुण भ्रम छूटा ज्यो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी नींद पोट सिराय महासागर समुंड लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय शीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मन्ने।

अखोट भंडार समाया था, चरण चरण चरण गुर सेवे, अकाड़ घड़ो रस पाया था, सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खिलाया था, कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था, मारू महला पंजवा, जिस है साज निवाजिया।

परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस कौ तुरहुं लिखिया सोई कार कमाई। पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई। खेत मेरा जमिया नखुट न

दे स्थाना ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए रामदा।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिखिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक कीर्तना जाय मटायो पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत विस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, ता की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतुल।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

बिरख छाया जैसी बिन सत पवन झूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ए। मारू महला पंजवां।

चेत मन मह हर हर निदहना एह निर्मल रीत रहाऊ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाऊ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाकू अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलोहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचार।

कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरों ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साह कै फरमायड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथे अगन पखै पड़हारी ऊर्द मुख महागुबारी सास सास संभाले सोई उतै खसम छड़ाए ले।

पछताए छूटत नाहिन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मह जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मह पाग्यो मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमती नाम उधारा गुरपुरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा।

ना गुरमति दद मती है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत ना जाननी पशु माहे समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जमै वारो वार गुर कै शब्दे जे मरै फिर मरै ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै सब कुल उदाहरण हार।

दिया समुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाता महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

मारू महला पहला शब्द मरे ता मार मारे भागो किस पह जाऊं जिस कह डर पै भागी है।

उस पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

सुख नहीं गाडे ला दे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए।

मनो विसारी है नित देव चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विचो आप गवाए बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाई।

चलना मुखे अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देखै सोई, जिन की आसु मन वसै।

खार समुंदर टंडो लिया एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी टिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

हर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम ना जपई।

सतावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटही हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चेतना।

मेल पेंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए अफरे उपार अफार टरे रहाउ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे खावे भोगै सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे

हों मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बुरु दोह नैन ओह नीर धरे चरन रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदै हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पए रस भोगण फोकट।

सखी हमारो कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर

जन सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लाख चौरासी प्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यों उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मह उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो।

जिने उपायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जन वेद करहे ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

गोपाल गोपाल गुण नित गाहु नानक पये प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा घर चौथा अष्टपदियां।

हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ। तुदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई।

स ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विद वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता जिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भव मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जो नी फिरना जो वरताए सोए पल मान बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लाव है तित तित लगना।

काल जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित खानिया।

साहिब सबना सिर भाए मिले भव जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहु पुल्ला आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई पर पुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

चारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे भवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त बढ़ाई।

कह राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है, रख रख पैर तरे पौ तरना।

सत सत वरतै गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परखै, साचै हुक्म चलाई हे। सत संतोखी सत गुर पूरा, गुर का शब्द मन्ने सो सूरा, साची दरगाह साच नवा।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धी होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे।

होई, ठाके कर्म कमाई है, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है, माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है, एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भावै तिवें चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है, कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है देंदे तोहट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझ साच नारीजह दूजह परम पलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

हर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई है। बूझो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज है।

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है। ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैस है तखत सो शब्द विचारे तत लह।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजै न कोई साच शब्द पेंजह पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणै।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाज हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही।

खर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समंदर सी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

सरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मन मुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह अग

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

गहारा ही सतगुरु मिले त मनुआ टेके राम नाम बेसरन परेक हर तन नाम अमोलक देवे हर जस दरगाह प्यारा ही राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गात मित पाई नानक हर जाप।

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत्व विचारहु हर लिवलावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेक का बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात ना मेटै कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

गुप्त रहा ताही, चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द नराला, साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही, अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही, इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै, अंतर चोर मुहै घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही, दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवै जावै,

पेला जमवस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूजै आज काल पच जाता है सतगुर बाज ना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवै कर कृपा यूं सलै सरल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

को अंत न जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

लेवै वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

जाने जो किछ करे सो आपन पाणे लख चौरासी जी अपाई पाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई गुर बिन सो जी किना ना होई साच मिले सो साची पहाई ना विछड़ दुख पाईंदा तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई मेल ना पछोताईंदा आपे करता आपे भुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

ते साजी सृष्ट अपाए काया गणराजी अग्न पानी जियो ज्योत तुम्हारी सुन्ने कला रहा हिंदा सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश अपाई सुन्ने वर्ते जुग सबाई इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाइंदा सुन्नो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे इत सत सर मनुआ गुरमुख नावै फिर बहुड़ जोन ना पाइंदा सुन्नो चंद सूरज गहनारी तिसकी ज्योत त्रे पौन सारी सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुन्नो धरते आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाए खपाएंदा सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी सुन्नो उपजी सुन्न समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुन्नो रात दिन सदोह किए उपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ताकी कीमत कह ना सकै को।

पाया। जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ट उपाय किया पासारा। देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई। जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा। बुरा भला दोए मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मत वाले। रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई है।

जय गुर ज्ञान रत्न दी पाया पंच तत् मिल एहो तन किया आत्म राम पाए सुख तिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्ब निरंजन घट घट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुपाया।

चोहरे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर न लागे ताको, तुन उपजै शब्द जगाया, तू एक अंकार नरान मराजा, तू आप सवार है जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया,

लख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना हर आत्म राम नाम पाया सर्ब निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन

निरंजन राया दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रब रहया बनवारी पुरख अतीत वसै नेह केवल

कुल निरंजन गाया, होमे अमित शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो भवजल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हों मैं ममता लोभ बनासन, नौ दर मुक्ते दसवै आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया, अकल गाए जमते क्या डरिया, जात जात देखो तत तत तुम ही, अवरना दुतिया गाया।

मत सूजम पुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुतर मुक्त भये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के पाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यगन निवार समाई मन मुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर अलख लखाया गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै जिन्हो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगा।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपौ सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा लिबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

बहु भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे।

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

जासी दूजै भाए बांधा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम पुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी।

एहो मन पी जय ही माया लहर शब्द निवारी एहो मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

विष्णु महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जय ही वेद पढ़ है हर

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया।

गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटांब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी है, हम मैं मेरा दूजा पाया, किसना चल तुर खसम लिख पाया।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा।

आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप पुन वरतै संसारा हरख सोग सब दुख है पारा।

मुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यो चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाणै हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राताई जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हऊ मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण काहि को दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते अपा।

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम यथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई।

लाई, सच्ची भगती आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाही, आपे साजे सिष्ट अपाई, बिरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवै मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही।

तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाओ आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिपतो वरते मन मुख का क्या विसाहाई से मन मुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार ना जान है पै बिन क्यों निरपो सच पाई है।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

काचन काचे अगम अगोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाय सतगुर पूरा साच दृढ़ाय सच्चै शब्द सदा गुण गाय गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिख दासाहाय सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाहि अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हथ कर्म फिर जोनी पाए बिखिया कारण लब लोभ कमावै दुर्मत का दुराहि पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द हर नाम चित लाए मन तन हर रभिया काट अंतर मन पीने भगत सलाहाए मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाही से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

ये कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वस्या शब्दे सच सलाहाई से जन मिले तुर आप मलाई साची बाणी शब्द सुहाई नानक जन गुण गावे नित साची गुण गावे गुणी समाहाई मारू महला तीजा निचले एक सदा सच सोई पूरे गुरते सोजी होई हर रस पीने सदा त्यायन गुरमत सील सनाहाई अंदर रंग सदा सचियारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौ निद नाम वसया घट अंतर छोड़िया माया काला हाई रैयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्यायन सदा सुख पायन निश्चल राजत नाहाई आवन जाना रखे ना कोई जम्मन मरण तिसे ते होई गुरमुख साचा।

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कार्य सच नाम सुहेला बिन शब्द है कार्य के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजा

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर धावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

ए बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दृढ़ाए।

शब्द पहचान मरे न जम्मे ना दुख पाई मन ही मन समाएंदा सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया हम मैं विचो मोह चुकाया मन निर्मल फिर मैल ना लागे दर सच्चे सोभा पाएंदा आपे करे कराए आपे आपे वेख थापे उथापे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे सच सुन लेख पाएंदा गुरमुख सचो सच कमावे गुरमुख

आप निवाजी, आपे न्याओ करे सब साचा, साचे साच मलाएंदा, काया कोट है आकारा, माया मोह पसरिया पासारा, बिन शब्द पसमे की तेरी, खेहू खेर लाएंदा, काया कंचन कोटे पारा, जिस विच रविया शब्द

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चौ होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाई है, बिन नावह दुख पाईंदा, आप करे न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुर

गणत चकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन सीतल।

आई। गुर कै भाणै चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही।

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जियो दाता अगम अथाह ओस किल न तमाए वे परवाह तिसनो अपन ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो किछ

सतगुर सेवय सहज आनंदा फिर आए बुट्ठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है से वड भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चे का

जो तिन कहानी पीड़ा एंदा पूरा भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चा सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाई।

सुगै गुर कृपा ते मन तन पीजै रसना नाम त्याए रस पीजै रस ही ते रस पाएंदा महलै अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मलाएंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज

द्वारा निश्चलवा सा पाईला अंतर कार बंके थान सुहाया गुरमुख विरले किने थान पाया इत साथ निभ सलाही सच्ची हर सच्चा

हर दिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसिया पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसै सच गुणी गहीरा सचो सच वेखै सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदै रखो उरतारी गुर कै शब्द सदा सलाई मिल साचे सुख पाएंदा सो चेते जिसे आप चिताई गुर कै शब्द वसै मन आई आपे वेखै आपे बूजै आपै आप समाएंदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे आप पछाणे सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाएंदा एह काया पवित्र है शरीर

आए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाई, मन मुख भूले मोए बिल लाई, जिन को नदर हुए गुर

आई इतरंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाईंदा मन मुख बहुत करे अपमान।

कह तिसनो गुर शब्दी मेलाया तुदनो सेव है जो तुद भाव है गुर कै शब्दे सच समाव है आन दिन गुण रव है दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मर है से मरन सवार है हर के गुण हृदय उरतार है जन्म सफल हर चरणी लागी दूजा पाओ चुकाया हर जियो मेले आप मलाई गुर कै शब्दे आप गुआई अन दिन सदा हर भगती राती इस जग महला पाया।

सारा मनमुख अज्ञानी अंधारा धंधे धावत जन्म गवाया बिन नावह दुख पाया कर्म हुए ता सतगुर पाए हम मैं महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

पाया। जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। हम मैं मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चा ना ए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

मारू महला तीजा नदरी भगतां लहु मलाए भगत सलाहन सदा लिवलाए तो सरनाई उब्रह करती आपे मेल मलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हौ मैं विच सद जलै शरीरा कर्म होवै भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाई सतगुर ते सुख पाया।

दुख पाया। आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उर तारी। गुर के शब्द मरे मन मारी, हों मैं जाहि समाया। आवन जाने पर जब गोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया, ज्योति ज्योत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह काय हो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

सच्चे माही समाया, घरै अंदर को घर पाई, गुर कै शब्दे सहज सुपाई, उथै सोग वियोग न व्यापै, सहजे सहज समाया। दूजै पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरह बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावह, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होवे जे

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई हे, जिनको करतै तुर लिख पाई। अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजै नाही। गुर चरनी चित लाई हे, जिस भावै

ज्ञान रखन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सोवै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़े मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीओ सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वस्या निभलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है जां को राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साक सम

तुझै पह करते हर अन देन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देवान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवन ना काई तू करते राख मैं निमाणी है निमाणे मान करह तुद पा।

बनी प्रब तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीसै बल बल जाई प्रभ अपने ईसै तिस बिन दूजा अवर न दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवह जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवां।

रहे। ऐसा वणिज करहु ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही। सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही। तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना। जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई। धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली। तुझे बिना हौ कित ही ना लिख वचन देह छोड़ ना जासा ही। फिर कह आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा। जिचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे। जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे। बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही। आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया। ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही। रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे। बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही। मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर फिर चोटा खावै। जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया। सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही। हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे। ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही। गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई। नानक शरण दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही। मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिर नबेरा। सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है। हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला। रूप करे कर वेखे बिगसै आपे ही आप पूजा ही। आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा। आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही। साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही। आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही। सच

बाप तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरै, हमयो तेरी दृष्टि जाहि, तेरी दात तुझै ते होवै, देह दान सब सह जंत लोवै, टूट न आवै पूर भंडारै, तृप्त रहे आगी जाहि, जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी।

जिस चीते आवह तिस भौ केहा हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमें चोल चोल पी जाए। मरे नाही सद सद ही जीवे अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे गुरदूर किया परमी जाए। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़े सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे। बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत घट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन भाणे। साधु तूर जाचे।

तिस क्या कही है, गुरमुख नाम पदार्थ लही है, जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हरख सोग का नगर एह किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुर

भी परवाह काठ सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दुइ समसर सही है हौ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यों पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना श्रिष्ट उपाय धरी सब धरना जन नानक शरण पया हर द्वारे।

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारना आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचियोन पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संगराचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी। आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ इस कालना। ऐसा कोवड भागी आया, आठ पहर जिन खसमत आया। तिस जन कै संग तरह सब कोई, सो परवार सधारना। एह बख्शीस खसम के पावा, आठ पैर कर जोड़ त्यावा। नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा, सूरत देख ना भूल गवारा। मिथन महाराज।

को मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले अपार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खाणी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाक दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना। कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरै कर्म गुर का जप जपना। सर्ब निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना। गुर का शब्द वसै मन जाकै
दुख दर्द प्रमता का भागै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सोतनवंता जिन प्रभ त्याया, सोपतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सोपूर कर्मा नाशिना, जल कल महियल स्वामी सोई, अवर्मा कहिया दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अवरना दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक से ही जने उत्तम, जो पाव है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचै जा चंगना, मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिट है हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना, श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना, रसना गुण गावै हर तेरे, मिट है कमाते अब गुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पांच दूत तज तंगना, चरण कमल जप बोहित चरियै, संत संग मिल सागर तरियै, अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जोन ना नंगना, दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला, सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना, मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौ मैं हंतना, जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना, जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगह अगाह किस मित नहीं पाईऐ, सो बूजै जिस किरपंगना, छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी दंजा, कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृश टंगना, एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई, आद मादे अंत प्रभ रव्या, त्रिशन बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुमह करायो, सरल सहाई संत है तना, जाचक जाचै तुमह अरादै, पतत पावन पूर्ण प्रभ सादै, एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन निह किंचना, काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजीठै रंगना, सोलह कला संपूर्ण फलिया, अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया, आनंद बनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना, मारू सोले महला पंजवा।

कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाई। तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहा हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बार कथारे, ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता। कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर धड़ा। सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मनमुख गवारा। एक ना पार लंघावे आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाय समाया। वेखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा। कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया। केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया। आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा। जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे। तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवे जम नेड़ा। कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई। आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसह कह निबेड़ा। तिसह शरीक ना ही रे कोई, किस ही बुते जवाब ना होई। नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा। मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी। मद सूदर दामोदर स्वामी, ऋषि केश गोवर्धन तहारी। मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे। जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी, जग जीवन अबनासी ठाकुर। घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण। दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते। सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया। बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेतर मूर्त है सहसा। एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे। गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते। वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल। आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव। अकाल मूरत जिस कदे नाही खो। अबनासी अबगत अगोचर, सब किश तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी। केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा। निराहारी निरवैर समाया,
धार खेलो चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देन सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन तनी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग धर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्तर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अशल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिले जिसे आप मलाई, आप हो कोहे ना पावेगा, आपे गोपी आपे काना, आपे गहू चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी ही गुण कमन बखाने, सहस फनी सेख अंत न जाने, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया, पै भयानक जमदूत दुतर है माया, हो कृपाल इच्छा कर राखो, साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लाह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिलै मह मौला तस्बी याद करहो दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानो सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वो मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरन आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु प्रकारी पालका तिसह प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना कर गहली ने अंध कूपते विरले के साल का
आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोहर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर

आनंद दिन जागे आनंद बनोद करे हर सिमरन तिस माया संग ना तालका रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम सुन बेनंती खालका नाम रतन तेरा है प्यारी रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरे नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुर पूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग भज चुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसर पुरख बधाता, जलता फिर रह नित ताता, किरत कण को रख ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यों प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरे ना लावना, तार अन ग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ता की कीमत कहन ना जाई, जत कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

नानक बल बल जावना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला, विण गाहक गुण वेची है, तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तो गुण लाख बकाए। गुण ते गुण मिल पाई है, जे सतगुर माए समाए। मोल अमोल ना पाई है, बन जना लीजै हाथ। नानक पूरा तोल है,

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रख

सहज बनस्पत फूल फल भंवर वसै पै खंड नानक तरवर एक है एको फूल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने स्यों से सूरे परधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवां घर घर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देऊ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी, इस जुग में नाम निदान है, नामो नाल चल है, एहो अखुट कदे नान खुटई, खाए खर्चियो पल्ले, हर जन नेड़ ना आवई, जम कंकर जम कल्ले, से साहा सच्चे बन जा रिया, जिन हर तन पल्ले, हर कृपा ते हर पाई है, जा आप हर कल्ले। सलोक महला तीजा, मनमुख वपार सार ना जाननी, बिख विहाजह बिख संग्रह, बिख स्यो तरह प्यार, बाहरो पंडित सदाई दे, मनहो मूरख गावार, हर स्यो चेतना लाइनी, वादी तरन प्यार, वादा किया करन कहानियां, कूड़ बोल करह आहार, जग मह राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार, नानक नाम ना चेतनी, होए मैले मरह गवार। महला तीजा, दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखै दा, आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए, सब किश तिसै रजाए। पौड़ी, हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामै तृप्त नाही, दूजै परम पलाया, हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किशु ना पाईए, जे बहुत लुचाही, आवै जाए जम्मै मरै, गुर शब्द छुटाही, आप करै किसे आखीए, दूजा को नाही। सलोक महला तीजा, इस जग मह संती धन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई, सतगुर सच दृढ़ाया, इस धन की कीमत कही ना जाय, इत धन पाया भुख लथी, सुख वस्या मन आई, जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आई, मनमुख जगत निर्धन है, माया नो बिल लाई, अन दिन फिरदा सदा रह, भूख ना कदे जाय, शांत ना कदे आवई, नह सुख वसै मन आय, सदा चिंत चित वधार है, सहसा कदे ना जाय, नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय, सदा सदा सुख मह रह, सच्चे माहे समाय। महला तीजा, जिन उपाई मेदनी, सोई सार करे, एको सिमरहु पाई रहो, किस बिन अवर ना कोए, खाना शब्द चंगियाईया, जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सुनाए है, सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए, सहजे सच धन खटिया, थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द शिंगार है, जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है, जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जापै, हर हर नाम त्याई है, हौ मैं अज्ञान गुआपै, अंदर अमृत भरपूर है, चाखियां साध जापै, जिन चाखिया से निरपो भए, से हर रस त्रापै, हर कृपा तार पी आया, फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना व्याजै कोए, गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पाइन, जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है, जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्या सुख पाईऐ, गुर शब्दी विचार। पौड़ी, अंदर राजा तख्त है, आपे करे नियाउ, गुर शब्दी दर जानिऐ, अंदर महल असराउ, खरे परख खजाने पाइन, खोटिया नाही थाउ, सब सचो सच वर्तदा, सदा सच नियाउ, अमृत का रस आया,
मन वसिया नाहू सलूक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पौ गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुखे अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनु कहिए नानका जा घर वरते सब कोई पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांज धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलई क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक किस शरणागति जिन जगत उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझ ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन

हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारियो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलाव है त्यो चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर वेखे छिकड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवां पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रोता पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपरपरा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थालै माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित कर है बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकती हारिया एवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां अगाह कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना ठाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे किरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै
जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापे, जो नर उसकी सरनी परे किस कंबह पापे, जन्म जन्म की मल उतरे गुर तूड़ी नापे, जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपे, ऐसी शोभा जने की जे वड़ा हर प्रतापे, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस, महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव पावे आए, जो बैठे से फातिया उबरे भाग मथाए, महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानिए, तै सखी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी, हौ ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे, सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे, प्रभ जियो देव हो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावे, अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे, सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे, हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे, दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही, दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही, महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद, किस स्यो क्यों मन रूसी है जिस है हमारी किंद, महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन पने अत गुलाल, नानक बिन नावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल, पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा, जिन्नी ठगी जग ठगिया से तुद मार निवाड़ा, गुर भौजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा, सब इंद्रियां वस कर दित्तियो सतवंता साड़ा, जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाए रहो हर वसदा नेड़ा, दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ, नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ, महला पंजवा कपड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार, खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार, महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार, थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार, पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे, धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे, एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे, चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे, हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे, तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे, जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दीवान अपगे, हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे, दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर, हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए, महला पंजवा माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए, ह्याओ मिंजा ठंडड़ा
ਮੁੱਖ ਹੋ ਸੱਚ ਅਲਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

पंजवां मुआ जीवन दा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मोहब्बत एक सिंह ते मानस प्रधान महला पंजवां जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहन ना जाइए सच साहा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै पन्नण करन समरत है ओपत सब परलै करन कारण समरत है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै क्या मानस डोलै गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोलै सोई कम कमावना किया तुर मोलै तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोलै राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बूढ़ो हो गे परवार सकल सिंह राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बदहो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर राम राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनो ना तजह बेकार जेहे घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाइए रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते होए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद जा को खुरी।

ते पाया राम ते भवह न बारे बार रहाऊ। झूठा जग डहके घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न भई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुद्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावहंगी। सुन है सुन मिलिया समंदरसी पवन रूप होए जावहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे। आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावहंगे। रहाऊ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चुकावहंगे। दर्शन छोड़ भये समंदरसी एको नाम त्यावहंगे। जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमावहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समावहंगे। जीवत मरहो मरहो पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहे हो सगल में है अब कैसे परमा

तारन करन तब लग कही है, जब लग तत् ना जानिया, अब तो बिमल भय घट ही मह, कह कबीर मन मानिया, जिनगढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे की जत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे, तह हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुकते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसह पंच किरसाना, नैनू नकटू सर्वनू रसपत, इंद्री कहया ना।

संसाद अनपहु किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहु होए बना हम्बे सहो हदूर देखे ता पहु पवे बैरागी अड़े हुक्मे बूझे ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजे बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

लंबै। कहो कबीर एक बेनती बराजी अड़े, मोको भौजल पार उतारवना हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव गिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो, परियो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाव। सूरा सोप

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाहेगा। धर्म राय जब लेखा मांगै, क्या मुख लै कै जाहेगा। कहत कबीर सुनहोरे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर धरै रहा।

कबीर तलोचन सदना सैन तरह कहरव दास सुनो रे संत हो हर जियो ते सबै सरै मारू सुख सागर सुर तर चिंता मन काम तीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब शाद बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास बी चार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कहरव दास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया जाग अचेती राम, वखर राख मुइये खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावे, नानक मूर्ख अजहु ना चेतै, केव दूजा

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारी बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया खारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

रहे, चूकी अभमानी राम, अन दिन भोर भया, साच समानी राम, साच समानी गुरमुख मन भानी, गुरमुख साबत जागे, साच नाम अमृत गुर दिया, हर चरणी लिव लागे, प्रगटी जोत जोत मह जाता, मनमुख परम पलानी, नानक भोर भया मन मानिया।

यह साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाईए फिर पारी सतगुर शब्दी मिलै विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिलै मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ नरारी नानक आपे आप पछाण गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवरना दूजा भाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता।

बोल नरारे नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारे सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना

साचै राचा गुरमुख तरियै तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाने किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरियै जम डर मरियै जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे भय काट निरपहो तरह दुत्तर

गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी संत महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीविए राम जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीविए राम क्यों अमृत पीविए हर बिर जीविए तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन बिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख पवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए।

अनेक जन्म पाप कर परमे हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाए काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावह जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेहो अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरियात ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

ज्ञान हित चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपुरा मिले लखावी रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी रे हर हर नाम अमो

ब्रह्म हो रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

आव पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुस भागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावै दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावै ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

आया। चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रहे निहकामा। तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा। निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा

चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे है रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई अपै

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

खान, भाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आई लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लह जाए रहाव, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर ना देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

अमरेउ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोक बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी

योगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालु प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कभू ना छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी बहरे करन अकल पई होशी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंध ना सूझिया रह उदास आस नरासा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी भैरो महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री धुंद करन पए बहरे मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा।

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिट है गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्ब धन धारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चित लाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज सेती घर जाइए रहाउ परम भेद पौ कबहु ना छूटस आवत जात ना जानी बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मुए बिन पानी धंधा करत सगली पत खोवस परम ना मिट सगवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही अंधले तंद पसारा अकोल निरंजन।

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए जागत रह ना मूसे कोई। रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े।

जाको राखै अपनी सरनाई, साची लागै साचा फल पाई। रे जन कै स्यो करहु पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा। रहाउ एहो आकार तेरा है तारा, खिन में बिनसै करत न लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

माने आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निश्चल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छे सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे ता फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना भरियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

झूठ मलाई। सो प्रभ साचा सब ही साचा, साचा सब अकारा। नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा, कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतयुग परमहंस बीचा।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बा

सुख हुए हर राखिया उरतार ज्यों तिस भावै तिवें चलावै करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई। भैरू महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय। मनमुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर सिउ कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बुझाए, संडा मर का सब जाए पुकारी। प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़ी, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया। प्रहलाद का राखा हुए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार। हर तेरा कहा तुझ लय उबार, हिन मह पयान रूप निकसिया थम उपाड़। हर नाकिश लखी बिदारिया, प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कारज सुवारे, प्रहलाद जन के इक्की ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हों मैं भिख मारी, नानक राम नाम संत निस्तारी। भैरू महला तीजा, आपे दैत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसू ना जाने। शब्दे मेल मलाया रहाऊ, हन दिन भगत करह दिन राती। दुबदा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते। सच वस्या मन सोई, मूर्ख दुबदा पढ़ है मूल ना पछाण है। बिरथा जन्म गवाया, संत जना की निंदा करह। दुष्ट दैत चढ़ाया, प्रहलाद दुबदा ना पढ़े। हर नाम ना छोड़े, डरे ना किसे दा डराया।

जात। हौं तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ। जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावै, तिस कै नेड़ै कोई ना जावै। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरो महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम संवार। मद सूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार रहाउ। जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार। नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। भैरो महला चौथा, ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसे आपन वारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी।

सो तुद मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरे मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गणनी रहाओ गुरसिख हर बोलो हर गावहो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख घने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी भैरों महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराद देहे लो रोनी सो मुख जलो

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरों महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा खे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवां, चौपदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताए चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताए सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहूं दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाए जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगट आए भैरो महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाय बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे हुए बाहर, तौ कड़िया जे विसरे नरहर, तौ कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, द्वितीया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता,

कहा कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान,

ना दृष्ट रोग पच मोए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानू।

फिर जोनी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुर रोग कतह ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोगों काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माने चीत आवे ता चूकी काने चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अभनासी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

ते अपूछे, राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने, भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला, नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ, सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ, नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवां, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिनमै ऊणे सुपर भरिया। खिनमै सूके कीने हरिया, खिनमै न थावे को दीनो थान। खिनमै न माणे को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जापै जिस सतगुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख हर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो

आवै, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ नुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे

की आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै,

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब की नो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ, अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बहुतै धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संग पाइय वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावै निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निदान बेअंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतर है दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरु महला पंजवा गुरसो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लय दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिन मह बिन स्यो महापरेत आठ पहर हर हर जा

जग सब किस तेरा तू कर हार पार ब्रह्म बुरे अगम अपार निर्मल सुभा आचर्ज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रवयासोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

सोतनवंता जिस बुद्ध विवेका सो कलवंता जी सिमरै स्वामी सो पतवंता जी आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राख हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर न कोई, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन। तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारथ, प्रभु हमारा सा

पद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाउ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती।

नहीं भंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को रखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे।

पिंड तन तिसकी रास सोई मेरा स्वामी करना हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ जाके ग्रह में सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

सतगुरु अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिस की सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका

ताक ना हुई जिनको नदर भई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी धरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद स नदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका वेद कतेव करह कह बपरी नह बूझ एक एका मिठरा सखाए सो रोग परी जय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरू महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता कर दाया।

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सबे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे

जो तुर लिखिया सो आई पहुता जन स्यो वाद रचाया। पिता प्रहलाद स्यो गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई। जग जीवन दा

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजल पार न पावह कभी डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती।

नानक तिनकै सद बलिहार राम नाम उर धारे भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता जिस नाम हृदय इन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गवारा जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन जिस नाम हृदय सो साचा साह नाम हीन नाही पत वे साह जिस नाम हृदय सो सब मह जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गोपाल आवन जान रहे सुख पाया कहो नानक तत्तै तत मलाया भैरु महला पंजवां कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र

नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथह ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया काटे अंतर जामी।

कीरत हर साची बहुर बहुर किस संग मन राची रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरि हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

आवत संग न जात संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया, कह कबीर किस गुण बिचार, चले जुआरी दोए हाथ चार।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कत है ना जाई, रहाऊ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो,

जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दोनों

तरियाने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापी।

राती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

तेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सुआ रह आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही, तब

हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिब लाए सतर सै सलार है जाकी सवा लाख पैकंबर ताकी सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजलस

पंका पाई, दोवर कोट अरते वर खाई, रहाऊ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रब श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रय स्थान तीन त्रय खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादश दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध।

नवग्रह कोट ठाढे दरबार धर्म कोट जाकै प्रतिहार पवन कोट चौबारे फिरह बासक कोट सेज बिस्थर समुंद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अथारह पार कोट कमेर परह पंडार कोटक लक्ष्मी करह श्रृंगार कोटक पाप पुन बहो हिरह इंदर कोट जाके सेवा करह छप्पन कोट जाके प्रतिहार नगरी नगरी खेत अपार।

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे धरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ता को करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ बात।

सर्ब जाई उस्तत निंदा करे नर कोई नामे श्री रंग पेटल सोई कबहू खीर खांड की हो ना पावे कबहू घर घर टूक मगावे कबहू पूर्ण चने बिनावे ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

ही पाचहारी राम कह करताल बजावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख है हर नाखश जिन नखह बदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहो हम नर हर त्याव है राम अपै पद।

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करो कह ता लेकर ऊपर धरो कह ता मुई गऊ देऊ जे आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूधै दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की घट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस पति।

वैकुंठ तरै जौ गुर देव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुर देव झूठ झूठ झूठ झूठ।

जो कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक सुमाए मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राय फल लागा तब फूल बुलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मत सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाऊ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट का

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत पर फड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राय जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाउ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देवो धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन दासा

जात काजी मुल्ला हुवे सेख जोगी जंगम भगवे पेख को गिरही कर्मा की संद बिन बूजे सब खड़ियस बंद जेते जी लिखी सिरकार करनी ऊपर होवग सार हुक्म करह मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार क्या कमावे जोग।

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बंद हो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंचो हो जन्म गवाव हो काची तहग दवाल काहे गच लाव हो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोव हो तिस भीतर मन जोव हो

कंत प्यारी, जे तू पढ़िया पंडित बिना, दोए अखर दोए नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। बसंत हंडोल महला पहला, राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारू, दोए माई दोए बापा पड़िए, पंडित करो बिचारू, स्वामी पंडता तुम देहो मती, इन बिद पावो प्राणपति, रहाओ पीतर अगन बनास्पत मौली, सागर पंडै पाया, चंद सूरज दोए कर ही पीतर,

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलहरे मन के तहरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईए नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईए कर्म मिले हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखे प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिले बड़े आई गुरमुख से प्रदान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाऊ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावै तिसै खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरु

तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाम सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाई नानक नाम बसे मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बनराई गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिए शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए, होर

बहु अभिमान अपनी पत खोए। सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा। नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए। आप करे किस करण ना जाए।

होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाउ मन बसंत हरे सब लोए फलह खुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एहो मन जलिया दूजै दोए रहाओ एहो मन धंधै बांधा कार कमाए माया मूठा सदा बिन लाए एहो मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एहो मन छूटा गुर लिया छडाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एहो मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हों मैं कड़ै तोए रहाऊ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जां आपे लाए मूल लगै तां सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिटहों वारिया पाई गुर शब्द बिटहों बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया हुए एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हों मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नु बख्शियो नु पाई

करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोए। नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मलावा होए। राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। एको हर रविया सर्ब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए। रहाउ घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जाणह दूर। एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दुए सदे पए। मन हर सिमरहु अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख भंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे। रहाउ मन मुख फिर फिर हो मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे। भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी। सतगुर मिलै ता खोजिया, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मलाई, देखत दर्श पाप सब नासह। पवित्र परम पद पाए रहाउ, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। धन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया। अज्ञान अंधेर गवाया, जगन्नाथ जगदीश गुसाई। कर कृपा साध मलावे, नानक शांत होवै मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमनशे। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे। गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृपसे। जन्म जन्म के किल विक मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमसे। रहाउ तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। से धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डे भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे। रहाउ जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनीदे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा,
मन खिन खिन परम परम बहुत आवे तिल घर नहीं वासा पाई है। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाई है। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याई है। हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाई है। रहाओ कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमया लह ना सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाई है। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है। जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया देह

कीन मुग्ध सुंदर तार जोत कीन सब जाचक प्रभ तुम दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उधार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोभा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जाको खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे समाए जाके भगत आनंद मै जाके भगत

सर्ब ध्यान मह एक ध्यान, हर कीर्तन मह उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना, बसंत महला पंजवां। जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस अरादे

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो त्यार।

अपने जन प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए, बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर केते आवे, बिन सत गुर दीसै बिल लांती, साकत फिर आवे जावे, रहाओ से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल मही अल रव रहिया, गुरमिल नानक हर हर कहिया, अष्ट सिद्ध नव निध एह, कर्म परापत जिस नाम दे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुरमिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा, घर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी वछुनिया, तुम रवहु गोबिंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाऊ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, अन दिन उपजी सहज धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित रातो हर नाम रंग, रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होआ साध तूर, नित देखै स्वामी हजूर, काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई।

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाऊ, सोग संताप कटे प्रभे आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगता भली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत, बसंत महला पंजवा, हुक्म कर कीने निहाल, अपने सेवक को पया दयाल।

फूल फूल फूले, अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी, तुम मिलो हो प्रभ सुभागी, हर चेत मन मेरे रहाओ, सगन बास कूले, एक रहे सूख कठूले, बसंत रुत आई पर फूल तारहे, अब कलू आयो रे, एक नाम बोवहो, अन रूत नाही नाही, मत परम भूलो, गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा, मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे, बसंत महला पंजवां, घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाई, इन बिद पास

धर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेल आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

लो कदे नाही गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर हुए एकत राचे पर हर दुए दूर दर्द माथे अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

पारा, आवत जात न लागै बारा, दुख घणो मरियै करतारा, बिन प्रीतम को करै न सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

0: परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पति जय करण हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पवरा फूल बेल आपे संगत मीत मेल ऐसी

लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नजर तुम्हारी आदि पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

चारी कुंट सलाम करहंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरत सिमरत पुन दान, किश लाहा मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वडियाई, मेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, हिन पल फिर न रहाई, अनक उपाव जतन कर थाकी, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आण, सतगुर मिले ता पूरा पाईए, पज राम नाम निशान, रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हो आरसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पए हैं, ज्यो कृष्ण बिदर घर आया, मिले उस दामा पावनी तार, सब किसे आ गए दालद पंज।

खीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तेल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावै गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपे जाले अपरंपर।

घर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजा मल उदरिया।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन

तन्ने सेविया बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कहो गुर कियो परगास रे मन तू पी होए दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तो नह संगाई विख का माता आवै जाई हों हों करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपन नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की सरनाई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम त्याय कै हो हरिया पहाई, कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई, वन त्रिण त्रे पवन मौलिया, अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ, दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ, कितों उपजै कह रहे कह माही समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन त्याय सुन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे, बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया।

सिमरत मौली सिंह कतेब शंकर मौल्य जोग ध्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग ध्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तप कै भेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देव अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतमक लाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोए बिन अस्थन गऊ लवेरी पेंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पढ़न साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ावस आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडै मर कै कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सतावो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहारु मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष शेदे हो नख बेदार उए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नरसिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रत

दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाओ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बनजारे पांच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे।

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

तो जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी टोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोग लहर

हों तर भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाड।

मुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाऊ। जो जन दीन भये गुरु आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरु आगे गुर कै शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावे है रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावे है मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हऊ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावे मुख हो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम ने

लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाउ, दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख है पुरख मिलया सुख।

अपनी कर जानो छाड़ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद खुन काटे बूझ ना सके गवार सो किश करे जे साथ ना चाले।

बिन सत संग सुख किने ना पाया, जाए पूछो बेद बीचार। राणा राव सबै को चल है, झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बड़ी रे तुम हो। तिन स्यो झगरत पाप रहाओ, जिस धन का तुम गर्व करत हो। सो धन किसह न आप, खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस। तौ लागे पछताप, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी। हर तिन के जापो जाप, अपदेश करत नानक जन तुमको। जो सुनो तौ जाए संताप। सार महला चौथा कर पंजवा, दो पदे पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन जगन्नाथ जगदीशरो। जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक, सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक। तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत, तू हर स्वामी। तू आपे ही जान है अपनी पांत। हर कै निकट निकट, हर निकट ही बसते। ते हर के जन साधु हर पगात।

सदा आनंद जप जगदीश्वरा मन इच्छे फल पावो सबै फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर सिओ मिले हर भगत तूरा सार महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर खान

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संत हो जो भगत जना की पात राखे विच कल युग अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाऊ जा तो कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते।

करह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तऊ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो पिन दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

पाई सारंग महला पंजवां। ओए सुख का स्यो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिसमादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन अपाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सार महला पंजवां। बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परा।

पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिए रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सार महला पंजवां बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासे जो आवै हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावै वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाउ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ ता

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाउ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्श दिखावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाऊ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुल पाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोह गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन बड़ भागी हर पाई रहाऊ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रवदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रिनाई संत प्रताप परम सब नासी नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नस है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साई सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाउ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाउ दलाब दे जप होत पनीता जम की त्रास निवार महापतित के पातक उत्तर है हर नामा उर तार है जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रहचिरिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसर स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया देह नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो करे अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल भये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर भये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राण पति हर समका सार महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देस प्रिय रोम ना समसर लागै रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भंगै।

एक तुम्हें शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरे ओ तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग न संगा निरपौ पए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर

आई प्रभ तोहं किल बिख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट।

और द्वितीया सुबराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाव, प्रव सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई, मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई, सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई, सारं महला पंजवां, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाऊ, हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारी महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरणी पाइए, किसह त्याग मनुख जे सेवहु, तौ लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जीओ मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ।

सूझै प्रभ बिन कहूं को किस पह जासी ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर सब किश तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमहारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यों जान है त्यों पारे रहाउ जब भूख हो तब भोजन मांगे अघाए सुख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम न बिसरे तब जीवन पाईए बिनती नानक एह सारे सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते पहुर न कतहू तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवा अमृत नाम मन है आधारू जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारु रहाउ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारू आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन निरंकारु एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंडू कारु आदमा बेअंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारू सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी रहाव मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारे सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू

मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्जो आन जंजारी रहाओ देव सचार के दी सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंधकूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंजो।

ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास देत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरै तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो हो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो।

समाये, आनंद आनंद गुण गाया। वहां पकड़ कड लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुरबंधन काटे, बिचरत आन मलाया। सारन महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी। वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी रहाओ। सेव ब्रंच अर इंदर लोक, तामह जल तौ फिरिया। सिमर सिमर स्वामी पय सीतल, दुख दर्द भ्रम हिरिया। जो जो तरयो परातन लवतन, भगत पाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा। सारंग महला पंजवा, जिहवे अमृत गुण हर गाओ। हर हर बोल कथा सुन हर की, उच्चरहो प्रभ को नाओ रहाओ। राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभ हो पाओ। आन बेभूत मिथ्या कर मानो, साचा एह सुआओ। जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यों लिव लाओ। कहो नानक ता की सरनाई, देत सगल अपयाओ। सारंग महला पंजवा, होती नहीं कमन कश करनी। यह ओट पाई मिल संत है, गोपाल एक की सरनी रहाओ। पंच दोख छिदर या तन मह, बिखे ब्याद की करनी। आस अपार दिनस गण राखी, ग्रस्त जात बल जरनी। अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर, सर्ब दुख पै हरनी। मन बाछत चितवत नानक दास, देख जीवा प्रभ चरनी। सारंग महला पंजवा, फीके हर के नाम बिन साध। अमृत रस कीर्तन हर गाइय, अहनस पूर्ण नाद रहाओ। सिमरत शांत महा सुख पाइय, मिट जाहे सगल बिखाद। हर हर लाभ साध संग पाइय, कर लै आव हुलाद। सब ते ऊच ऊच ते ऊचो, अंत नहीं मर जाद। वर्ण ना साखो नानक महिमा, देख रहे बिस्माद। सारंग महला पंजवा।

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा, आवे राम सरन बड़ भागी, एक सबिन किश होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर, साध संग सुख पाया। अणद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरन गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाओ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद विसार सगले। भलो नाम सुआउ रहाओ, चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिव लाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ। सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है। चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, निश्चल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए, सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ता को, जा का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनिए हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन। फोर परम की रेखा रहाओ, कहत सुनत किश शांत ना उपजत। बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत। ता कै मुख लागे का लेखा, जा कै रास सर्व सुख स्वामी। आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दग्ध होहे खिन अंतर। कोट दान इशनान रहाओ, आन जंजार वृथा श्रम कालत। बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे। जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूर्ण सुख सागर। कर कृपा देव दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे, बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागे,
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाउ बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरझाना।

सब बंधन जंजाल रहाउ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा, बिरथा काटे काल। जब जम आए संघारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को, सदा सदा किरपाल। सुख निदान नानक प्रभ मेरा, साध संग धन माल। सारंग महला पंजवां, मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीते, पोहत नह संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती,

हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी, तू तत बार न लागे तांको, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवा, चितवो वा अवसर मन माहे, हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिय है, तेते बिरथे जाहे, पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संयम कर्म सुख साधन, तोलना कछुए लाहे, चरण कमल नानक मन बेदेओ, चरण है संग समाहे। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभु संगे अंतर जामी, आग्या कुशल पाशै खेम सूखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे, गुण गोपाल हर राया, बिसरना जाई निमक हिरदय ते, पूरे गुरु मलाया। कर कृपा राख।

को बल होए, सगल मनोरथ पूर्णता हुके, दुख ना व्यापै कोई रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का, सुन जीवा तिस सोए, उद्म करो दर्शन पेखन कहो, कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो, दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को, चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवां, जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले, बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब।

साध संगत कै बल बल जाई बहुर न जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सार महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कह संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाव पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरावार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाती तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहा महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसू के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछतावह कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार आखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत परती हार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार

चरण कमल सरनाए नानक साध सदा बलिहार सारंग महला पंजवा। रे पापी तै कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद विकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा। माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध है कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही। सारंग महला पंजवा। माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रपयो खुमारु रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारु चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारु कर गहलीने सरबस दीने दीपक पयो उजारु नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारु। सारी महला पंजवा। माई री आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर ना आवह जाहे। सारंग महला पंजवा। हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन पये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर ना जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार। सारंग महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जां कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान। सारंग महला पंजवा। बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ ना के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव। सारी महला पंजवा।

वार रहाओ, कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही, सारंग महला पंजवां, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नित तन, बिखै माहे अलेप रहाव, जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीतेओ।

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुण गोविंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक सबिन हो आन ना जानो दुतिया भाऊ सब लूह रहाओ। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुख दाता बिनसी हौ मैं हूहू। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत। एह जग मह सार रहाव ईत ऊत ना डोल कतहू। नाम हिरदय तार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण। तिनके दोख जरे सफल देहे तन ओए जन्मे। प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। सब ऊपर साध पले नानक दास तूर जन बांचे। उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत। प्रभ दर्श देख है कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिखिया मद चाखी। रहा कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी। संता बिनत कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस। महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो। सारंग महला पंजवा माई री अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर। रहाव प्राण मान पत पित सुत बंदप हर सर्बस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर। नानक सरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर। सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
नानका सच जोए सारंग महला पंजवां हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाव साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार कर अनग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रैन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारन महला पंजवां मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाय बिनसी सब अवमानी रहाव तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवां त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग

तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पार द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुन गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवन सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण शरण परन साधु आन वान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पाम नाम महापनीत सेवक भय दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुकत सुनत मुकत रहत जन्म रहते राम राम सार पूत नानक तत बीचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप।

ज्ञान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिकम गार तोरी। सारंग महला पंजवा। मन बेरा गैगी खोजती दरसार रहाओ साधु संतन सेवकै प्रयोही अरै त्यायो आनंद रूपी पेख कै।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

हर रस रत्ते अद कहाई, एक बिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथ

सूझै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै, नानक से जर थाए पए हैं।

तरन करावन अपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका हुन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संत हो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसे ही संगे। काट काट कथा राजन की चाले कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बड़ाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक वसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेठ नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूख में आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वार रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बेआप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भय निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर विस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। हब रस माणे भोग कटाणे आन ना बिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिस है, सांग ना कछु हो जाई, कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हियो अरापो देहो संदेशा प्रभ जीओ कैसा, कह मोहन परवेसा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थान अंतर देसा, बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता, कह ना सको हर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा, कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जेह चरण बसाया, चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुआया, भया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया, दुख नाठा सुख घर मह बूठा, महा आनंद सहजाया।

देखै तंदै लाई, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाही। आवह नंगे जाही नंगे, विचे करह वथार, नानक हुक्म ना जानिय अगै काई कार। महला पहला, जिन सथाप जिया को भेजै, जिन सथाप लै जावे, आपे थाप उथाप।

मुख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धुपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिया सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिया नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिया संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिया सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमती ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारिय है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना उपावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला तर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने है सुख उपजै नामे गत होई नाए मने है पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने है पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने है पंथ प्रगता नामे सब लोई नानक सतगुर मिले है नाओ मनी है जिन देवै सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिकै किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

हर सब कारण करता करी देखे वारू वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखे आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरे नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता पुकारंता अजानंता जा बुझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाही सच पवै तुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिऐ पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचर माया मोह पसारी अंतर लाल च भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुए बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिंह प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाऊ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोए रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चख है तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगति आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाती सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो होमै तुटै तां को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीओ
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाइए थाऊ वेद व्यापारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद न चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन न भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोए न साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ है गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना इक नाओ है, बूझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम बसिया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावह काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हउ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर तार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहि वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावह पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारे आवन जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जी